हाँ हाँ हो रा जामरो माटो माथी बाल्दै मन को बाती डल्ला फरकाई फरकाई ढाड़ मरकाई मरकाई।

तक तक तक तक तक तक तक रे हो यति का दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाई हिँड ह ह ह ह ह हो रा

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम चेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: ओहो आज डाई हो नहीं मजा लागा ठो मजा से दवाई करे ना कहतो
1: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
0: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
1: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाइत
0: ए ओसिनो कला से वहां जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
1: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्परमा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि
2: घर रंगाउ खुशी बनाउ
1: उपहार जित्ने अवसर पाउ
0: बर्जर पेन्स
3: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
4: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9850303479 र 9840821380
5: ओहो आज डाई हाँ नै मजा लागत हो मजासे दवाई करे ना कहतु
6: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
5: ए बात तो ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
6: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
5: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
6: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081535717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
5: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ लैजिना हो
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजुइना कान कम सुन्ना कान दम्म हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत जस्तेक बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहां मिलत
5: ए ओसिड हो कल से बुडू हो वहां ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही त
6: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9984206697 9985823697 वो 9804086697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
5: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढ्यार सेवा डेटी रलेक जानकारी कराइटी।
6: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा।
5: ओस्तक, सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार, पैथोलॉजी ल्याब सेवा, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदी।
6: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महिनाक अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छुट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 व 98482804665।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
2: अब मूड़ और नस संबंधी रोग के खातिर लखनऊ न जाए पड़ी, आपके अपने शहर बहराइच में यहाँ अब विश्व स्तरीय न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध है। माँ पीतम्बरा ब्रेन स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पर यहाँ उपचार के खातिर उपलब्ध हैं लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर, जहाँ पर यहाँ बीमार लोगों के उपचार के खातिर लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिवम ए मदेसिया से सहूलियत दर में यहाँ उपचार सेवा पावा जा सका जाते है।
3: हमरे यहाँ मुड़े चोट, मुड़े हड्डी के फ्रैक्चर, दिमाग के नस फटे समस्या, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफलास यानी कि मुड़े में पानी की चमक समस्या, दिमागी बुखार, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसे चेहरा में यहाँ दर्द, रीढ़ के हड्डी में यहाँ ट्यूमर, टीबी, रीढ़ के हड्डी के फ्रैक्चर के दूरबीन से ऑपरेशन, कमर दर्द, हाथ पैर में यहाँ झनझनाहट, हाथ पाँव में यहाँ सूजन, नस सटका, गटई में यहाँ अकड़न, रीढ़ में यहाँ जनमिन से भावा घाव के उपचार होते है।
2: ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा केयर, न्यूरो क्रिटिकल केयर और 24 घंटा इमरजेंसी के सेवा उपलब्ध है। ऐसन श्याम डायग्नोस्टिक से रोग जांचे गुणस्तरीय सेवा समेत उपलब्ध है।
3: स्थान अस्पताल रोड भीटू मल के सामने बहराइच, आज संपर्क किया जाए। संपर्क नंबर +91-911-844-2021 और +91-99192211। ऐसे नेपाली नंबर 9769249329। ऊपर के दिया नंबर में यहाँ व्हाट्सएप से भी मैसेज और फोन कई सका जाता है।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: हेलो, हाँ सखी, लागत है कि हम फोन में बात करी थे।
1: अब सामने बैठे ना दिखाते आपका कि फोन मौका
0: ना है, हमार नजर तो उधर रहा है ना, इधर ना देखे रहे नहीं मारे।
1: तो हम लोग आए गो है रेडियो कृष्ण सारे फेम में, आप लोग जाना जाते शनिचर के आज घर अंगनामा। तो आज के दिन आप लोग के समझ श्राद्ध तो चलते हैं, 16 श्राद्ध है ये है, और साथ ही आज विशेष दिन जितिया पर्व, जो कि निर्जला व्रत रख के अपने बच्चन का तिर उपवास रखा जाता है, तो वो भी विशेष दिन आज पड़ा है। तो आज हम लोग चर्चा की जाए, और साथ ही जाना जाते कि हर हफ्ता कुछ ना कुछ नवा चीज़ विषय वस्तु रहा है, तो यही कतिर सखी कुछ जानकारी बतावा जाए कि हमारे लोग कार्यक्रम कैसे सुना जाए, कैसे सुन सका जाता है, जैसे छूट जाए तो कैसे सुना जाए।
0: हाँ, तो ये कार्यक्रम अगर छूट जाए तो फिर इमा ये कार्यक्रम जो है रिकॉर्ड भी होते, मतलब इनके वीडियो भी बनाते है, तो साथ ही कार्यक्रम आप लोग सुन सका जाते जो फेसबुक के पेज है, एफएम के फेसबुक के पेज है, किरसार एफएम के पेज है, उमा ये कार्यक्रम पोस्ट किया जाते, अपलोड किया जाते। इसके बाद हम लोगों के पर्सनल जो है आईडी है फेसबुक के, तो उमा हम लोग पोस्ट करा जाते, उमा आप लोग सुन सका जाते। तो सखी,
1: हाँ सके,
0: तो फिर क्या करा जाए,
1: अब आपकी मर्जी क्या करा जाए, अब बाकी तो आप जानते हो क्या कर रखे। और आगे तो गीत संगीत के साथ ही हम लोगों के कार्यक्रम चलते रही, और विषय वस्तु भी आप लोग जान गवागा है। तो स्वागत है संपूर्ण श्रोता सखी लोगन का कार्यक्रम घर अंगनामा, और घर अंगनामा आप लोगों के साथ हम लोग बत कही ऐसे करते रहा जाए। तब तक के लिए आप सखी किधर ले जाती, हम लोग उधर चला जाए, फिर आवाज है कार्यक्रम घर अंगनामा।
0: तो ठीक है, अभी चला जाए प्यारा सा गीत संगीत की तरफ। इसके बाद आज तो जितिया पर्व भी है ना, उसके बारे में चर्चा भी करा जाइए कि क्या विचार है।
1: हाँ सखी, चला जाना कि संगीत
0: बाद में ना। ठीक है।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सके बताओ
0: तो बतावा जाए फिर के बारे में। अब जो है आज आज जो है जितिया पर्व पड़ा है ना।
1: आज जितिया पर्व है और बहुत से मातारी लोग अपने अपने बच्चन खातिर संतान खातिर व्रत रखा जाता है। जैसे कि जैसे आप सुना गा कि जैसे कमर छट रहा है नहीं, ऐसे
0: हाँ
1: लड़का खातिर व्रत, ऐसे जितिया पर्व भी लड़का खातिर रखा जाता है। और धीरे धीरे कुछ जब हम लोग छोटे रहें तो थोड़ा बहुत ही का सुना जाता रहा, लेकिन आजकल के जैसे हम लोग के छठ के करा जाते हैं ऐसे उमा धीरे धीरे कत्ता बढ़ गवा। धीरे धीरे मान्यता आदमी के सोच हो अपन मनोकामना पूर्ण भवा तो अपन सोच रखत हैं कि हाँ हमहूँ व्रत रखबे। ऐसे छठ माता के भी व्रत के अब हम लोग अत्ता देखा जाता है चारों तरफ भीड़ रहा है। ऐसे अब जितिया पर्व के भी हम लोग देखा जाता है कि संख्या बढ़त जाता है, हर कोई इके पर्व माँ व्रत रखत है। और वैसे भी हर कोई का जैसे संतान के विशेष करके संतान के पर्व है तो लड़का के व्रत होए तो अपने बच्चन खातिर सुख समृद्धि खातिर उनके आगे के जीवन बढ़िया होए उनके लंबी आयु होए के कामना कही के मातारी अपने लड़का खातिर व्रत रखा थी।
0: हाँ, जैसे कि अब पहले यही त्योहार जो है उतना लोगन का उतना पता नहीं रहता रहा है,
1: हाँ
0: लेकिन अब सब लोग जाने भी लगे हैं, प्रचलित हो गए
1: हाँ
0: हैं।
1: ज़्यादातर सखी के कहाँ है प्रचलित जैसे कहाँ नहीं है। जैसे पहले बिहार माँ और झारखंड माँ ऐसे न पूरब के उत्तर प्रदेश के तरफ ऐसे भोजपुरी मतलब जहाँ मैथिली बोलत हैं मैथिली समुदाय जैसे हम लोग के जनकपुर, तो अब ऐसे ये जो मैथिली भाषा माँ है इसके कारण से मैं ये व्रत उमा से प्रचलित भवा है। तो धीरे धीरे अब का होते कि हम लोग हर जगह हर समुदाय के हर जाति के हर जगह समय अनुसार नौकरी अनुसार हर जगह के हम लोग मिश्रित हन है
0: मिश्रित
1: ना।
0: हैं।
1: तो जोन पर्व के प्रचलन हम लोग इधर देखा गया बचपन से उका जाना जाते हैं और जोन प्रचलन फिर अन्य समुदाय से जो हम लोग देखा जाते हो तो उका सीख के भी अपनावा जाते है। तो वैसे भी हिंदू धर्म में अपनावे वाला व्रत हुए पर्व हुए जिसके कारण से छोटे पर थोड़ा हम लोग ना जान पावा जाता रहा है काहे से
0: हाँ
1: कि संख्या कम रहा है हियाँ
0: हाँ वही बताए थे,
1: तो
0: जैसे पहले
1: सुना भी ना
0: उतना,
1: जाता
0: हाँ
1: रहा।
0: उतना इस सब के महत्व के बारे में हम लोग का पता भी ना रहा है।
1: हाँ
0: अब तो जो है प्रचलित है, चारों तरफ ही सुनिंग मिलत है, समझ में भी आवत है। अब तो पहले उतना समझ में ना आवत रहा है त्योहार का है कैसे है, लेकिन इके विशेषता पता ना रहा है ना। अब जैसे आप बताओ ना, छोटे में
1: हाँ
0: यहाँ ये बहुत जैसे लोग पूजत रहे, लेकिन चर्चित तो रहा हुई, ऐसी बात नहीं है, उस वक्त भी चर्चित रहा
1: हाँ
0: हुई है ये
1: लेकिन हम लोग
0: त्योहार,
1: के
0: लेकिन
1: ध्यान से अलग
0: ध्यान से
1: रहा
0: अलग
1: का है।
0: रहा।
1: जब जब घर में जोन पर्व मनावा जाते हैं
0: हाँ
1: हमेशा
0: वही ज्यादा
1: उमा हम
0: धाम
1: लोग का
0: रहा थे,
1: ध्यान रहा थे
0: हाँ ईमान आए
1: है ना।
0: रहा।
1: अब ये कह रहा है कि कहीं कहीं कोई कोई का हम लोग देखा जाता रहा उस समुदाय से संबंधित वो भाषा से
0: हाँ
1: संबंधित कोई कोई का देखा जाता रहा तो उतना ध्यान भी नहीं जाता रहा है।
0: हाँ तो
1: लेकिन
0: अब
1: अब कहा है सरकार भी क्षेत्र अनुसार जितिया पर्व के विदा भी दे लाग है
0: हाँ
1: जिसके कारण से अब जितिया पर्व का हो
0: का
1: विदा
0: होए,
1: का है ही मका होते जिज्ञासा के अनुसार हम लोग धीरे धीरे ज्ञान लेत इके बारे में जानकारी भी करेगा। और कुछ अपने साथी लोग हैं कुछ अपने सखी लोगन भी हैं जो कि इके उपवास रखते हैं तो जति हमारे सखी लोग हैं और जो उपवास रखा जाते हैं तो आप लोगों के जितिया पर्व के हार्दिक मंगल
0: मैं
1: में
0: शुभकामना
1: शुभकामना
0: है।
1: है। और आप लोग अच्छे से व्रत रखा जाए उपवास रखा जाए कैसे व्रत उपवास भी इके बहुत कठिन है कहते हैं कि माँ भी जैसे मान लो निर्जला व्रत
0: निराजल
1: रखा
0: व्रत
1: जाता है।
0: रहते हैं।
1: हाँ
0: अच्छा
1: तो ई के मारे कठिन है व्रत और कठिन होते हुए लेकिन सोचो सखी कि लड़का खातिर अब तक कठिन व्रत उपवास महतारी रखा थी और वही महतारी बाप के अब उधर श्राद्ध भी चलत
0: अच्छा जैसे
1: है
0: कि छठ पूजा में भी निराजली व्रत रहा जाते हैं ना
1: हाँ
0: लड़का के,
1: हाँ
0: और सकट में भी निराजली व्रत रहा जाते हैं। तो यही तो ना, मतलब यही के जैसे, वही मतलब वही त्योहार के जैसे इमा भी निराजली व्रत रहा जाते हैं।
1: हाँ अभी मैं विशेष कहे है ना कि जैसे संतान खातिर उनके संतान के लंबी उम्र है ना और उनके अच्छे सेहत और उनके कामयाबी के खातिर ही व्रत उपवास महतारी रखा थी। तो
0: अच्छा
1: सबसे पहले बात कहे कि इधर हम लोग जैसे अपने पुरखा के बाबा हैं दाई हैं पर बाबा हैं सबके पुरखा खातिर महतारी बाप के खातिर श्राद्ध भी चलत है 16 श्राद्ध है ना। और वैसे वही जैसे महतारी तो दुख कह के 9 महीना पेट में गर्भ रख के जन्म देते हैं ओके बाद पालन पोषण कह के उनका बड़ा करा जाते हैं फिर उनके का दुख कष्ट और ना आवे कहके उपवास भी अत्य कठिन कठिन उपवास रखे जाती महतारी लोग रखा थी। काल जब महतारी के अशक्त हो जाती या कमजोर हो जाती है लाचार हो जाती उस समय माँ संतान के फर्ज का है यानी संतान का कैसे अपने महतारी बाप का देखे के चाहिए उनके पालन पोषण कैसे करे के चाहिए कैसे जब कहा नहीं है आदमी वृद्ध हो जाते तो बच्चन समान हो जाते हैं।
0: हाँ उमा जो रहा था बच्चन के कर्तव्य रहते कि अपने माँ बाप के कैसे कौन मेरे के ख्याल रखे चाहिए, है कि ना सखी।
1: हाँ
0: हाँ, तो ये आप लोग भी जो है अपने महतारी बाप के प्रति कर्तव्य जरूर निभावा जाए, अपने माँ बाप के सेवा करा जाए।
1: हाँ, तो सेवा करते जाए। और के साथ साथ सखी, अब जितिया पर्व है तो पर्व के ऊपर भी कुछ हम लोगों का सुनाए दिन जाए। और कहे से जो गीत संगीत समुदाय अनुसार, हाँ, आपके कार्यक्रम अनुसार गीत संगीत सुनाया जाता है, तो ई का भी सुने हम लोगों का, कुछ नया हो जाए, कुछ सुना जाए, कुछ के बारे में और ज्ञान बढ़ जाए, है ना।
0: ठीक है, ठीक है सखी। अब छोटे से व्यापारी तरफ चला जाए, व्यापारी विश्राम तरफ, इसके बाद जो है सुना जाए।
1: ठीक है, चला जाए, फिर हम लोग सुनते रहा जी घर अंगना।
2: आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटु रोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विकास नेपाल तेजस्वी हर्ट सेन्टरमा आफ्नो सेवाहरू दैनिक रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछौँ।
3: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, सुगर, मधुमेह, मुटु दुख्ने, हिँड्दा छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टा सुनिने, शरीर सुनिने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने, हर्ट एट्याक, हर्ट ब्लक, मुटुको बाथरोग, मुटुको पेसमेकर हालेको वा हाल्नुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरेको वा गर्नुपर्ने, बाइपास अपरेसन गरेको वा गर्नुपर्ने, मुटुको भल्भ फेरेको वा फेर्नुपर्ने र रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरिरहेको बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
2: उपलब्ध सेवाहरू
3: ईसीजी, इको, टिएमटी, 24 घन्टे होल्टर, एबीपीएम, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल र मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच, रगत सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षणका साथै सम्पूर्ण प्रकारका जाँचहरू गरिन्छ।
2: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म, दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म।
3: सम्पर्क नम्बर 081536667, 98215, 97532। ठेगाना गणेशमान चोक, भेरी अस्पताल जाने बाटो, नेपालगञ्ज।

0: రంగా ఉదయదేశ్ మీరు ఎవరెస్ట్
1: होइन कौशल्य मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुस् त पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, चौबिसै घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, चौबिसै घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 081414007 र 98482363।
5: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउने गाह्रो।
4: किन गाह्रो? मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
5: भन्न त सजिलो छ तर कहाँ खोज्न जाने होला?
4: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
6: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
3: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081536410 र 98486235।
7: माया बाबु, टेलर के त सक्कु सामान हो गेल बा, अब मसिन कहाँ से नन्ना हो?
8: छी दादु, फे ठहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे बाबु?
8: उहाँ त अनमोल, उषा ओ ताज ब्रांड का संग मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री ओ मरमट कई जिठा। एक रख संग संग मशीन संबंधी सक्कु पाठ पुर्जा ओ सामान फे पा जिठा। अट्रगेल कहाँ हो? कुशल कारीगर हुकन से मरमट फे करा जिठा।
9: एक एक संगे दस्या देवारी हो, छठ त्योहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
7: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर, घरबाई टोल 2, पीपल चौतरा, नेपालगंज बाँके। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार। मोबाइल नंबर बा 98481-28318 और नंबर बा 98224-52478। एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।
10: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी
0: तो आपका कसला, आप सुने रही हो कि ना जितिया पर्व, मतलब कोई
1: सुनित
0: सखी?
1: रहन, जिसे सुनित रहन इतना ध्यान नहीं देते रहन का,
0: हाँ
1: मगर अब जो ई के का विशेषता है, ई के बारे में जब पता चला तो थोड़ा अच्छा
0: पता
1: लगा।
0: चला कि वो बहुत कठिन व्रत
1: बहुत
0: लाग हम
1: कठिन
0: उनका,
1: व्रत
0: जैसे
1: है।
0: हम लोग छठ
1: हाँ
0: माता के व्रत देखा जाते है जो मतलब धूमधाम से अब मनावा जाता है, ऐसे जैसे उमा कष्ट है एकदम कठिन, ऐसे जितिया पर्व के जो व्रत है उपवास है ये भी कठिन है। अभी के मुख्य जैसे विवरण में जैसे हम लोग का कहा जाए कह के, कि जैसे ये के आज के दिन 3 अक्टूबर का जो हम लोगों के तिथि अनुसार भी आज के दिन पड़ा है ये व्रत, और ये ज़्यादातर ये ख़त्म कब हुई सकी, जैसे ये ख़त्म हुई 4 अक्टूबर यानी कि काल सवेरे
1: कल 24 घंटा
0: छः
1: रात
0: बज के 23 मिनट के बाद ही के बाद पारण है।
1: अच्छा,
0: तो
1: मतलब ये 24 घंटा पानी ना पियो, है ना? पानी
0: हाँ
1: ना पिया
0: निर्जला
1: जाता है,
0: व्रत
1: निरा
0: रखे है,
1: निर्जल व्रत।
0: और निर्जला व्रत के साथ साथ अब जैसे आज लगभग 3 दिन ही हम लाग जात है।
1: अच्छा।
0: अभी मैं एक नहाए खाए के भी है, जो आज जैसे काल है जो नहाए खाए में साद मतलब सादवी भोजन एकदम सादा सेंधा नमक के प्रयोग एक टाइम खाना खाते हैं। अब उमा का जो चीज़ खावा जात है नियम अनुसार वही चीज़ के खाना उमा खाते हैं, और उसके बाद आज फिर के व्रत रखे है निर्जला।
1: अच्छा, जैसे कि सेम जो छठ रहते पूजा वही
0: हाँ
1: तरीके से रहते है
0: वही
1: ना?
0: तरीका से रहा था, और फिर काल सवेरे इके पूजा पाठ करके पारण भी हुए। तो जैसे ही मैं कहा जाता है कि जैसे माता लोग जो निर्जला व्रत रहा थी बिना पानी के रहा थी और उपवास रखा थी, और भगवान जीवंत वाहन के पूजा करा थी और इमा कथा भी सुना थी। तो
1: अच्छा।
0: इमा कई जो कथा के जो जितिया पर्व के ऊपर जो कथा है, जैसे कहाँ से शुरू करागा, कौन कारण से इके पर्व रहे लगागा, कुछ
1: हाँ,
0: ना
1: इके
0: कुछ कहा था
1: विशेषता,
0: प्रौढ़िक
1: कोई भी
0: कहानी
1: त्योहार
0: पर।
1: के पीछे विशेषता तो बहुत
0: हाँ
1: है सखी
0: विशेषता
1: जी।
0: रहते हैं, तो विशेषता में मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है सकी, अब वैसे भी कहते जो पूर्ण रूप से जो चीज़ के ज्ञान बाद में लिया जाए, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाता तो माफ़ करा जाए, कैसे बहुत जना के बारे में पूर्ण रूप से भी ज्ञान हुई, लेकिन हम लोग समय अनुसार ही पर्व आज विशेष दिन पर आ तो चर्चा करें भी तो हमारे लोगन के फर्ज बना
1: हाँ,
0: था,
1: फर्ज बना था।
0: कैसे जैसे हम लोग जाना गए ऐसे आप लोग भी जाना जाए, और आप लोग से जो जानकारी है तो लाइक कमेंट में भी बताए दीन जाए, जो भी गलती हुई उसका सुधार करे मौका भी दिया जाए, और हमरे अनुसार पता लगाए अनुसार सखी कि जैसे सबसे पहले तो इमा कहते हैं कि महुआ रोटी और नोनी के साग खावा जाते हैं। तो
1: अच्छा।
0: अब नोनी के साग ये का कहते हैं, तो ये कहते हैं जंगल जो बंजर जमीन में होते हैं तो फैला रहते हैं उके साग ही का इमा खावा जाते हैं। तो इमा और ज़्यादातर इमा जो हम लोग सतपुतिया तरोई कहा जाता है, तरोई की सब्जी मतलब ऐसा चीज़ में खाते हैं जिमा की आयरन और पौष्टिक आहार विटामिन मिले कैल्शियम, कहे से उनका 24 घंटा फिर आगे निर्जला व्रत रखे रहते हैं तो शरीर में थोड़ा
1: ताजगी रहे
0: मजबूती
1: न।
0: हो,
1: हाँ
0: ताजगी रहे, पानी की
1: हाँ
0: कमी
1: हाँ पानी
0: महसूस
1: की
0: ना
1: कमी
0: हो,
1: ना महसूस
0: ये
1: हो।
0: हमारे सादा भोजन इके बनाए के खाते हैं।
1: खाते हैं।
0: अब उसके बाद जैसे कहते हैं कि मैं इके एक कहानी प्रौढ़िक कहानी है, तो अब वो प्रौढ़िक कहानी हम लोग जरूर बतावा जाए, और बताओ उस पहले जब आप गाना सुना रहे हो तो गाना सुनने में बड़ा निक लागत है सखी, तो कहे ना हम लोग फिर गीत संगीत सुन लिया जाए फिर हम लोग चर्चा करा जाए।
1: ठीक है सखी, और का गीत संगीत ही सुन लिया जाए पहले,
0: हाँ
1: इके बाद जो है चर्चा करा जाए। ठीक है।
0: ठीक है।

0: रंग बहार रंग बहार
1: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
1: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी रेफ्रिजरेटर वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाउ खुशी बढाउ उपहार जित्ने अवसर पाउ
0: बर्जर पेन्स
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ
4: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचार दाँत सफा करने दाँत भर्ने दाँत निकाल्ने दुखेको दाँतको जराको उपचार खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने रगत आउने पिप बग्ने मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार पहेँलो खैरो दाँत सानो र ठुलो दाँत छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ
4: फोन नम्बर 081-532-375
5: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला
6: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ
5: हो र यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि
6: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू पिआइसियू आइसियू हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन् अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि
5: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो
6: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि
5: सम्पर्क नम्बर 081-535-717
7: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बिडिएस दिल्ली एफएजिसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा
3: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने किरा लागेको दाँतलाई भर्ने दाँत निकाल्ने दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने मेटल क्राउन बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने डिजिटल एक्सरे सेवा
8: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451
9: बाबा के कान पीड़ा थे दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है इतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में यहाँ ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
9: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
10: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगञ्ज छ फुलटेग्रा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संचालक पूरन चौधरी सम्पर्क नम्बर 98-480-2697 98-580-2397 और 98-014-83-697
9: बहिरोपन निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए
2: नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी।
0: कहाँ हो तो क्या करत हो माँ, मतलब गीत संगीत तो बजावे कहाँ रहा है आपसे?
1: नहीं जो आप बोले रहो ना, आप बतावत रहो, थोड़ा बात रही गवा रहा है।
0: हाँ बात तो रही गा रहा है। हाँ, तो बात ही रही गा रहा है कि जैसे हम लोग जीतिया पर्व मनावा जाते है, उपवास रखा जाते है। हाँ। तो माँ जैसे हम लोगों के जो ग्रंथ अनुसार का कहानी है, काहे ऊ के पर्व मनावा जाते है और काहे ही का जैसे सखी लोग महिलाएं लोग काहे अपने संतान खातिर खाली रहते हैं, कही कही के विशेष संतान खातिर काहे है कही के। तो मैं एक कहानी है सखी कि जैसे मतलब जितिया पर्व के वर्तमान कहानी एक चील और सियारिन के है।
1: अच्छा,
0: चील और सियारिन मतलब प्रसिद्ध कहानी है ये, और ये माँ जैसे वर्तमान ये कथा सुना भी जात है। तो एक जंगल माँ चील और सियारिन बहुत मतलब घनिष्ठ सखी रही,
1: अच्छा
0: जैसे अब हम लोग सखी हैं ना।
1: हाँ,
0: हाँ वैसे सखी रहीं।
1: हाँ
0: तो पक्की सखी रहीं, अब पक्की माने भी घनिष्ठ सखी, माँ पक्की सखी और हम लोग
1: पक्की सखी
0: हाँ
1: मतलब
0: बेस्ट
1: ये है,
0: सखी।
1: पक्की सखी मतलब ये है कि अरे
0: पक्की माने सीमेंट वाला ना, मतलब पक्की मन मिले
1: कच्च,
0: वाला।
1: हाँ वही।
0: हाँ
1: अच्छा
0: अब
1: अच्छा
0: बात का दूसरे तरफ कहे ताना जाए, अब आपो का देर हो लगी है नी,
1: कहाँ
0: और
1: का।
0: हम लोग तो जाने जरूरी है कि भाई कथा का है। अब कहा कथा में पहले चील और सियारिन के बात तो आइन गा है, और
1: हाँ
0: सखी रही दोनों, और हम दो सखी बैठे नहीं थी।
1: हाँ
0: तो एक मतलब एक दिन जंगल माँ वो लोग बहुत सी महिलाएं का बार बार देखा करत रहीं कि नदी किनारे महिलाएं नहाए आवत रहीं और का करत रहीं। तो धीरे धीरे देखत देखत उनका ज्ञान भवा कि जीतिया व्रत के उपवास करत हैं। तो वो लोग सोचिन कि ये लोग करत हैं तो हमहू लोग मतलब ये व्रत रखा जाए। तो दोनों जना सखी सलाह कहके निर्जला व्रत रखिन।
1: अच्छा
0: हाँ तो व्रत के दौरान में जब सियारिन का बहुत भूख लाग गवा, नहीं सही पावे, बहुत जना के होत है आदत नहीं होत है तो उस अपने आप का सही नहीं पावत है और भूख नहीं सही पाइन तो बर्दाश्त नहीं कर पाइन, तो रात के चुप्पे से अपन मांस मछली हड्डी वड्डी खा लीन। और
1: अच्छा
0: दूसर दिन उधर दूसर तरफ जो चील रही वो पूरे शुद्धा और निष्ठा के साथ व्रत उपवास रखे, प्यास भी लाग तब भी पानी नहीं पीन और व्रत कह के, और दोनों जना अगले जन्म में दोनों जना मनुष्य के रूप में और बहिन बहिन के घर में मतलब जन्म ले लीन।
1: मतलब एक ही घर में
0: हाँ
1: बहन बहन बन के आई।
0: हाँ अब एक जनी मतलब निष्ठा के साथ उपवास रही, दूसर जनी नए कई पाइन तो लुकाए के मतलब अपन खाए लीन। अब खाए तो लीहीन और उपवास करिन, तो आगे अब बतावे चली कि ना, अब श्रोता तनी वो है कि सखी अब आगे और बतावा जाए कि, और फिर धीरे से बाद
1: बतावा,
0: में
1: जब
0: बता।
1: अगर छोटा सा है थोड़ा सा रहेगा है तो बता ही दिया जाए।
0: अब मतलब कभो कभो होत नहीं है, बतवात बतवात लंबा हो जात है। और वैसे भी अब एक जनी जब दोनों जनी चील के जब जन्म भवा मनुष्य के जीवन में भवा उन लोगन के, पहले तो जानवर रहे बाद में हम लोग के शरीर में उन लोग के मनुष्य के जीवन में जाए, तब चील के जो कथा रहा है जिनके नाम उनके चील के बड़ी बहन बनी रही उनका नाम रहा शीलावती, और उनके शादी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बढ़िया से सुंदर से हुई गवा, और शादी के बाद कुछ दिन के बाद एकदम बढ़िया सुंदर पुत्र पैदा भवा। और सियारिन के जो अधूरा व्रत करे रही वो छोट बहन रही इनके नाम रहा कपूरवती, तो उनके शादी राज्य के राजा के साथ तो भवा, लेकिन उनके कोई बच्चा जीवित नहीं रहत रहा, बचत नहीं रहा। ये कहानी के सार मतलब यही है कि दोनों जना के फिर जन्म तो भवा, और जो पिछले जन्म में जो करे रही
1: पिछला जन्म के ई
0: हाँ
1: जन्म में
0: जब
1: हुआ
0: मतलब व्रत उपवास
1: पर।
0: करीन देख के कैसे वो सबके देख के उनके अंदर जो जागा उपवास के अर्थ है इसकी, तो उनके जो निष्ठा के साथ करीन ना है उनके मतलब अच्छे से घर बार मिला, पुत्र भी भवा,
1: पुत्र भी हुआ।
0: और वैसे तो उनके बहिन के भी कपूरवती के भी ब्याह तो भवा राजा से भवा, घर संपत्ति से संपन्न रहा है, लेकिन जितने भी उनके पुत्र वह भी जितने भी बच्चे जन्म लेते रहे तो जीवित नहीं रह जाते
1: जीवित
0: हैं।
1: नहीं रह
0: तो
1: जाता है।
0: कथा के सार यही है कि निष्ठा के साथ
1: व्रत का रखा
0: व्रत
1: जाए।
0: का रखा जाए,
1: हाँ
0: कहे
1: हाँ
0: से लुकाए के खाए से भी झूठ बोले से भी ऊपर वाला सब देखत है
1: सब देखत है।
0: जो अपने।
1: और हाँ, और जो ई जन्म में जो करा जाए तो अगले जन्म में यहाँ वही बन के मतलब वही मेरे के फल मिली है।
0: फल मिले तो अपने संतान के खातिर रखा जाता है, तो निष्ठा के साथ और अपने अंदर जो क्षमता है तो बढ़िया से रहा जाए, और क्षमता बिना का होते कि कोई भी चीज़ जो हम लोग करा जाते तो भी उल्टे हम लोगों का श्राप लग जाता
1: श्राप
0: है।
1: लग जाते हैं।
0: तो कथा के अर्थ यही रहा है कि निष्ठा के साथ व्रत रखा जाए तो हम लोगों का भगवान जैसे भी कहीं ना कहीं से जैसे पिछले साल जो पिछले हमारे लोग के जन्म के पूर्ण भी इस साल में हम लोग भुगते पड़त है,
1: हाँ, नहीं? यही हमारे जो है अगर व्रत का अगर रखा जाए तो निष्ठावान के तरीके से एकदम जैसे मन का कंट्रोल करके ही रखा जाए।
0: हाँ तो अब जैसे मन का कंट्रोल सखी, अब वो सखी सखी के बात रहा है, अब हाँ, हम लोग सखी हन हाँ, तो याद रखा जाए। अब बढ़ते तो बहुत व्रत उपवास आवत है, तो अभी एक सीख मिलेगा है कि अभी तो
1: सखी नवरात्र आवत है,
0: माता जी के नौ दिन के नवरात्र आवत है, बस ये पितर हम लोग के सोलह सरात पितर खत्म हुई है, तैसे फिर माता जी के आगमन हुई, तो पहले से ही सखी से ये कथा से सीख मिल गया है।
1: हाँ तो सखी अब चला जाए,
0: तो चला जाए, हम लोग चला जाए कार्यक्रम,
1: नहीं 2 बजे के टाइम चेक,
0: अच्छा 2 बजे टाइम चेक की तरफ चला जाए, टाइम चेक के बाद फिर तो कार्यक्रम तो है ही है।
1: हाँ बिल्कुल,

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है कहाँ जाई तो ठीक रही तनी बताई दियो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में ही हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है
4: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बाके संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37

0: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
1: हरेक सामानको खरिदमा 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
0: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अगाडि।
1: सम्पर्क 97051148 70।
0: सोफा हब नेपालगञ्ज,
1: विश्वासमा नम्बर 1,
0: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
2: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: अब जो है बात बात कही तो बड़ा अच्छा रहा है ना, त्योहार के बारे में यहाँ जो चीज़ नए जाना जात रहा है उके विषय में यहाँ हम लोग जाना भी गा है ना। ऐसे बात करते करते ही उके कुछ व्याख्या भी मिल जाते हैं, सुने का मिल जाते हैं। अब जैसे आप कहानी बताए हो है ना, दुई सखी लोगन के कहानी, और हम दुई सखी सुना भी गवागा, तो उके विशेषता हर कोई त्योहार के पीछे कुछ ना कुछ विशेषता तो जरूरे होते।
1: तभी ना कहो कि दोनों जना सखी बने के, हम लोग सखी के पीछे कुछ विशेषता है, सखी की का कहा जाते है। अब तो
0: अभी बात ना कहे ना, हम तो बात ना कहे,
1: कुछ पीछे विशेषता होते कहा तो नहीं, पर्व के कोनो भी पर्व के पीछे विशेषता होते,
0: वही तो हम कहें पर्व के पीछे विशेषता, यही बात कहे। अब पता नहीं हम ये कहे कि ना कहे, मगर हम यही बात कहे।
1: आप कहो कि नहीं कहो बाद में सोता, आप लोग सुन के जरूर बताओ जाइए नहीं,
0: लेकिन हम यही कहे हैं कि हाँ। कोई ना कोई त्योहार के पीछे, पर्व के पीछे विशेषता हाँ। होते हैं।
1: अच्छा चलो चलो, आप कहे हो तो बात खत्म है, और विशेषता तो होते है, बिना विशेषता के हाँ, कोई चीज के जो भी पर्व हाँ, आवत है तो, कहा नहीं काहे होते, काहे मनावा जाते, कहा नहीं काहे होते, काहे मनावा जाते, प्रश्न लगा।

0: ज्यादा हम लोग पहुंच गए हैं,
1: पितृपक्ष
0: ज्यादा है अभी हो, अभी जानो एक हफ्ता है।
1: अब शनिवार के सखी अब जो है आखिरी रही है ना विदाई,
0: तो ठीक है शनिवार के विदाई रही, तो विदाई के बाद फिर हम लोग शुरुआत कर दीजिए उधर माता जी के आगमन हाँ। खातिर, और कहत नहीं है पर्व के पीछे पर्व, और पर्व के पीछे जैसे हम लोगों के ही करवा और छठ ये सब खत्म हुई, दीपावली खत्म हुई, उसके बाद फिर त्योहारन से शांत हो जावा जाते हैं माहौल। अभी एक पर्व के बाद दूसर पर्व, दूसर के बाद तीसर आवत है, बाद में बीच में दो तीन महीना चार महीना एकदम शांत हो जाते हैं। तो पर्वन के पीछे हम लोगों के इधर पुरखा के भी प्रत्येक दिन है, तो आप लोगों के मैं जरूर प्रत्येक दिन कहूँ ना कोई कोई ना कोई के तिथि अनुसार श्राद्ध परत भी है, और इस श्राद्ध में सबसे पहले तो कहा जाता है अपने क्षमता अनुसार है नी प्यार से तन मन से आप लोग जो भी श्रद्धा अनुसार जितना कई पावा जा पुरखा लोगन का पितर लोगन का अब खाना पानी जो भी होत है और दान दक्षिणा उतना जरूर करा जा। अभी ना है कि कथा अनुसार सखी कहते कि जैसे कथा में देखो जबकि रहा है कि निर्जला व्रत रखा जाए दोनों सखी सलाह के करना है, लेकिन एक जना लुकाए के खाई
1: ऐसे सोचिन के कोई देखा ना है लेकिन हाँ ऊपर वाला सब देखते
0: हैं, ऐसे कई कहानी में है और भी कहानी में ऐसी चीज है, करवा में भी ऐसे कहानी होत है कि दिन भर करवा रहा थी हम लोग निर्जला हन और हम कुछ ना खाए पिए हैं लेकिन लुकाए लुकाए उन्हों खा ले थी ऐसे तो हर चीज में होत है कि जे मतलब अब जैसे अब हम लोग के श्राद्ध चलत है अब कहा जाए कि हमारे फिर कुछ ना ये हम न कहे हमें जत्ता रहा उत्ता कई दिन, लेकिन आप अपने का बारह व्यंजन खावा जाते हर साल या हर एक दिन, और श्राद्ध के दिन कहा जाए हमारे तो कुछ ना है एक सूखा रूखा या पूरी सब्जी खाली खवा होगा या कुछ खवा होगा कि हमरे उपाय नहीं रहे जत्ता रहा कई दिन, लेकिन ये अपने मन से अपने आप का झूठ बोले से कोनो फायदा है भी नहीं,
1: कोई
0: है।
1: फायदा नहीं है
0: जो भी है जो हम लोग से जत्ते दान दे पावा जाते वत्ते अपने पुरखा के लिए भी फायदा और अपने अगले जन्म के लिए भी फायदा, भाई कथा अनुसार तो यही होते कि जो ये जन्म में करी हो अगले जन्म में भी उके हम लोग से जुटा रहा था कहानी
1: काम नहीं है जैसी करनी वैसी भरनी।
0: हाँ लेकिन अब यही बात है कि विज्ञान कहा थे कि कसके अब जुटा रहा था भाई, एक तब हमारे लोगन के अपन पौराणिक कहानी है संस्कृत है अपने जो संस्कार अनुसार त्योहारे मनाओ, दूसरा विज्ञान कहा थे ये कहाँ कुछ नहीं होते तो ऐसे कहा होते ये विवाद जिंदगी भर चलते रही, लेकिन फिर भी अपने कल्चर का अपने बाल बच्चन का अपने घर परिवार का जो भी अपन हम लोग के जो होते त्योहारन उके मान्यता जरूर बरकरार रखा जाए, नहीं तो धीरे धीरे का होते लोप हो जाते हैं,
1: लोप हो जाते सही
0: है नी, तो यही लोप हो पर अब बतवावा तो हम लोग बहुत जाते हैं।
1: हाँ तो ठीक है सखी काकरा जाए तो व्यापारिक विश्राम के तरफ चलो,
0: अब जोन भी करा जाए हम बीचम रोके मारे याद दिलाए दी थी कि सखी का पता बीचम याद आए जा कुछ सुनाए दे,
1: अच्छा हुआ आप याद दिलाए दियो तो याद दिलावे के बाद से हमका याद आएगा वहाँ कि व्यापारिक विश्राम के तरफ चले के
0: हम इके कदर हमका याद नहीं दिलाए रहे, हम दिलाए रहे कुछ दूसरे कोई बात नहीं है हम सबर कर लिया अबे तो सुने के मिलबे करी
1: हां सुने
0: तो फिर चला जाए व्यापारिक विश्राम के तरफ
1: ठीक है।
2: समय बदलियो पुस्ता फेरियो तर साथ साथ उस्तै छ।

0: हाँ सखी सुनो गीत, जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ, जो हाँ. बोएगा वो पाएगा, है ना, ना तेरा ना क्या, इसे से कुछ गीत रहा है ना, समझ में
1: सुना का है, अब कहा भी बचपन से सुना जाता
0: है, गाय के थोड़ी ना सुनाई था ना, आपका गाय के थोड़ी ना बताई थे ना,
1: जैसे मतलब करियो वैसे कहा, और भी कुछ है ना कौन, जैसे मेवा पई हो,
0: मेवा पई हो,
1: वो के तो कहा उठे याद है कुछ,
0: अब याद, अब ये तो कहो तो गाना में गाय के सुनाई थी, तो गाना सुनाया थे बस की, तो फिर आप बोलियो कैसे,
1: सेवा करियो तो मेवा पई,
0: हाँ ये तो जैसी करनी वैसी,
1: हाँ तो हर चीज के
0: जो बोएगा वो पाएगा
1: वो तो कहा जाता है, और भी ऐसे गाना है ना, है क्या कौन,
0: न तेरा नहीं न मेरा, ऐसे है कुछ गीत है, अरे हाँ जो भी है समझ में आवा,
1: हाँ, बस समझ में आएगा जो भी है, अब गीत
0: तो पेट में है मुंह पे नहीं आवा थे, बस सत्य है
1: ना, तो मुंह पर आवे भी ना चाहिए, अभी हम लोग बतवाई लेन जाए, मन में जान जाओ, और इसे भी जाना जाते, जो करा जाते के फल तो मिलते हैं,
0: मिलते हैं,
1: और जो हम लोग मुंह से कहा जाते बड़ी बड़ी बातें लेकिन अंदर मन से कपट रहा था, तो उके फल एक न एक दिन दिखाई देते है, और वैसे भी सखी जो 16 दिन के श्राद्ध हम लोग कहा जाते है, तो के नाम है श्राद्ध है,
0: श्राद्ध है,
1: अब श्राद्ध के श्रद्धा के नाम से ई के नाम विकास भवा है श्रद्धा, अब जत्ते ई के मारे श्रद्धा है कि जो हम लोग
0: श्रद्धा भाव से अपने पितर लोगन के यहाँ आदर सम्मान के साथ उनका जो भी भोजन ग्रहण करावा जाए तो यही होते
1: हैं, तो अभी हम लोग पहले बतवावा कर रहे हैं कि हृदय मन अपने जो श्रद्धा अनुसार जत्ता कई पाओ, और वैसे तो कहा नहीं है कि आंखें मूंद के अगर घर में कुछ भी नहीं है, अगर सोच बनाए ले तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाते
0: हैं, बन जाते हैं,
1: तो वही मेर है कि श्राद्ध का के नाम भी श्रद्धा के हिसाब से के नाम परा है, और विश्वास के नाम पर ही अपने जो पितरन है उनका हम लोग पिंडदान दई के उनका आगामी दिन जो जैसे भी हैं उनका पुण्य मिले कह के, पितरमा जो दोष के मुक्ति होत है धार्मिक मान्यता अनुसार जैसे कहा जाता है कि 16 दिन के ही श्राद्ध होते हैं, और 16 दिन के दौरान में विधि विधान से हम लोग पितरन के आशीर्वाद मिले कह के, और कहा भी जाते हैं कि 16 दिन वो धरती पर आवत
0: है
1: जी के अनुसार उनके आशीर्वाद
0: अपने अपने घर में विराजमान रहा
1: हुई हाँ, और जो कुंडली अनुसार जो हम लोग के पितृ दोष लाग रहा था उससे उनका मुक्ति मिले जी के कारण से हम लोग उनके हर साल इस 16 दिन के श्राद्ध में तिथि अनुसार श्राद्ध किन जात है, अब जो हम लोग फिर हैं उनके तो सेवा किन जाए, चाहे से जब जिंदा बैठे हैं तो वो हम लोगों का जते आशीर्वाद दे हैं वो हम लोगों के पुण्य के हिसाब से है, और जो हम लोगों का छोड़ के जा चुके हैं उनका उनके मतलब उनके आशीर्वाद अब हम लोग जिंदगी भर लिए कत्तिर हम लोग ये कार्य करा जाते हैं, तो भगवानों विधि अनुसार हम लोगों का कई कार्य बाँट के दीन है, है ना, पूजा पाठ से पुण्य कमाओ, दान से कमाओ, सीधा दे के अपने पास जो शक्ति हो यथाशक्ति हो, अगले के कोई बेचारा भूखा है तो आपके पास है तो आप उसका जरूर भूखा का खाना खिलाओ, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि कहा जाते हैं कि जिका करे से हम लोगों का पुण्य मिलत है, तो ऐसे में है श्राद्ध भी है जो कि हर साल 16 दिन के श्राद्ध आवत है, जो हम पितर रहते हैं छोड़ के चले जाते हैं जिनका हम लोग देखा भी नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी उनके श्राद्ध की तिथि में श्राद्ध कीन जाते हैं,
0: कीन जाते हैं,
1: अब इनसे सुख समृद्धि के प्राप्ति खातिर कहा जाता है कि इन जब ये प्रसन्न होते हैं तो अपने पितरन का अपने वंशज का लंबी आयु धन संतान और कीर्ति के आशीर्वाद दे के जात हैं जिसके कारण से हम लोगों की क्षमता सोच की वजह से हम लोग अच्छे से इनके श्राद्ध करा जाते हैं सखी, और दूसरी बात क्या है कि अब हम लोग श्राद्ध के विधि जैसे कहा जाता है श्राद्ध के विधि में कहा जाता है, तो सबसे पहले कहा है तर्पण कहे है, पिंडदान कहे है, ब्राह्मण भोजन कहे है, पंचबली भोग कहे है, और अब इसके बाद भी आप यथाशक्ति कत्ता दान दे सका जाता है, है अब ऐसा जगह दान दीन जा जिका कि आपका वो प्रयोग करे और आपके नाम ले कि हाँ उके लिए एक एक कम्मले भी अगर पाएगा तो सोचे उके कतिर सोना चांदी हीरा के तना संपत्ति पाए तना उका महसूस हो,
0: हाँ अब जैसे ही दान दक्षिणा करे से ही जो है अपने पितर लोगन का प्राप्त होते
1: हैं, हाँ तो यही से एक कहानी है कहा जाना श्रद्धा से श्राद्ध हम लोग करा जाते है, तो अब जी के पास है ये ना जो अपने परेशानी में है वो भी अपने हिसाब से जो आप दुई टाइम खाना खाया जाता है तो एक टाइम का कोई का दान दे के भी आपका अपने आप का स्वीकार कर सका जाता है, आप एक दिन कष्ट करागा एक टाइम खाना खावागा लेकिन एक टाइम के खाना के बराबर आप दान दे दियागा आपके लिए वही सबसे बड़ा है, कहे से आप अपने आपका भूखा रह के भी श्राद्ध के फर्ज का निभावागा, ये हो हमारे लोगों के श्रद्धा तो ही श्रद्धा अनुसार जी के जस है वैसे श्राद्ध हम लोग करा जाते हैं। अब हम लोग ऐसे सुन के ऐसे हिसाब से जो हम लोग के आवे वाले जो वंशज हैं उनका भी भावना यही तना हो, संपूर्ण समाज में सोच यही तना हो, सबके एक दूसरे का सहयोग करे एक सोच हो और जो अपने पितृ हैं उनका न भूले के सोच हो। कैसे बहुत से बच्चे संतान का होते हैं अपने पुरखा लोग नहीं करना जानत है, अब जाने का मतलब क्या है देखिन तो है ना, लेकिन फिर भी जो उनके वंशज के नाम है पर बाबा के है बाबा के है जो वंशज के जो नामे हैं उन नाम उनका तो उनका ज्ञान रखे पड़ा कि हाँ हमरे बाबा ऐसे रहे हैं या पर बाबा के नाम ही है, दाई के नाम ही है, दादी के नाम ही है। जब हम लोग देखा जाते कि आजकल एक पुस्तक के बाद दूसरे पुस्तक के नाम बच्चन का भी ना याद रहा था जी के कारण से दुख के कार्य तो ये शुरुआत हो गई सकी कि कहाँ से कहाँ मतलब समाज पहुँचा
0: पीढ़ी पर पीढ़ी। हाँ वही बात है, बच्चन के यहाँ अपने बाबा दादी के नाम पता होना चाहिए जरूरी रहा थे, और जो बच्चे लोग जो अपने घर में जो देखिए अपने माँ बाप के यहाँ वही चीज़ बच्चे भी जो है अपने जीवन में यहाँ लागू भी करी हैं, बड़े हो के वही चीज़ उन भी ऐसे करी हैं, अपने संस्कार का कभी ना भूलिए, संस्कार का लेके चलिए। अब आधुनिक युग में यहाँ देखा जा सके हर चीज़ जो है जो है लोप होते जाते हैं, लेकिन लेकिन जो है अपने बच्चे में यही संस्कार डाला जाए तो ये लोप न हुई है मेरे ख्याल से।
1: अब यही बात पर एक और बात कह रही थी सखी कि जैसे हम जो अनुभव किया देखा है प्रत्यक्ष में वैसे भी तो अब सरकार के सोच का हो सकता है, आप देखा गया कि आजकल के जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जो जन्मदर्ता बनत है उस जन्मदर्ता में हम लोग देखा जाते हैं कि एक पुस्तक के नाम होते हैं। पहले हम लोगों के समय या फिर पहले से हम हमेशा देखा जाता रहा कि दो पुस्तक के वहाँ नाम रहत रहा, अरे दाई के नहीं रहत रहा बाबा के तो जरूर रहत रहा है। लेकिन अब आवे वाला जो जन्मदर्ता बनत है सरकार निर्धारण करी से जो जन्मदर्ता बनत है वहाँ बच्चा के नाम बच्चा के माँ के नाम बच्चा के पिता के नाम रहत है, बाकी जो पुरखा उनके बाबा रहत है बाबा के नाम भी अब नहीं रहत है। तो इसके कारण से हम ये बोले हैं कि जब बच्चा अपन दो पुस्तक के एक पुस्तक के नाम एक पुस्तक तो के पास है ये जो पिछले उनके बाबा दाई साथ ही रहते हैं फिर भी वो उनका नाम के ज्ञान नहीं रहा है पूजनीय उनके नाम का है दुई पुस्ता तीन पुस्ता तो अपने पुस्तन के नाम तो कम से कम अपने श्राद्ध अनुसार अपने दिमाग में तो उनका रखे चाहिए जिसके कारण से हम विषय में जोड़े हन।
0: नहीं सही बात है, ये होना चाहिए जो पहले रहा है वही ठीक रहा है ना, काहे कि बच्चे लोगों का भी ज्ञान रहता रहा है कि हमारे बाबा जिसे दादी के का नाम है कहके और अपने पुस्ता का याद रहता रहा उनके।
1: हाँ कई घटना देखे इन सके ऐसे होते हैं ना कि अब हम शिक्षा क्षेत्र से जुटे हैं तो जब कहते हैं भरना विद्यार्थी भरना अभियान होते भरना कराओ टाइम में क्या होते कि जब पूछा जाते है कि मान लो बच्चे के पिताजी जब नाम लिखावे छोटे छोटे बच्चन के लिखावे आवत हैं जो उनसे रिकॉर्ड अनुसार पूछा जाता है कि आपके अम्मा के नाम का हो है नी, तो अब पापा के नाम तो जान जाते हैं गाजन गीता में लिखा रहा था जन्मदर्ता में रहा था। जो अब बताओ मातारी मतलब देहांत हो के जा चुकी मातारी प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन बच्चा के बाप से पूछा जाता है कि आपके मातारी के का नाम रहा तो अपने मातारी के नाम तक ना जाते। अब इके मारे दुख इके मारे ला कि आज जितिया पर्व के हम लोग बात करा जाते जो संतान कतिर मातारी इतना दुख करत थी इतना कष्ट उठाती थी उपवास रखा थी वही बच्चा
0: मातारी के नाम ही नहीं रहा
1: अपने मातारी जो ये दुनिया में लावत है जो उनका उजाला दिखावत है ये जिंदगी में उनका मतलब रह के धई के जात ही विदाई के जात ही तो उनके नाम आपके दिमाग में न रही अपने मातारी बाप के दिमाग में आपके नाम न रही तो सोचा जाए कि ये दुनिया ये समाज कहाँ जात है कहाँ जात है बहुत सी विकृति
0: और सखी और जाना तो कि जिसे जब बच्चा जब जन्म लेते हैं और जो जन्म ले के बाद जो है उसके जुबान पर पहला शब्द माँ की ही आवत
1: है
0: माँ सबसे पहले वो जुबान पे आवत है और जो है 9 महीना पेट में रहा थे बच्चा और उके दुनिया वही रहा थे। हाँ। और जैसे वो जैसे मतलब वो जन्म हो जाते उके तो पहला उच्चारण जो है माँ के होते तो माँ के नाम निशान ना रहिए अगर जो है तो कैसे का हुई है थोड़ा दुख के बात तो है
1: जो हम लोग अनुसंधान देखा जाते जो देखा गया है प्रत्यक्ष जो हम इस समय हर साल हम ये चीज
0: के बलिदान बहुत रहते बच्चन के ऊपर
1: तो वही चीज का हम चर्चा मलाना आप लोग अनर्थ न लिया जाए कहे से आप लोग भी देखा जाते हो इस शायद के जन्मदर्ता कौन मेर के है और इससे पहले वाले जन्मदर्ता माँ कौन मेर के है और उस जन्मदर्ता का तो बात छोड़ दी जाए लेकिन जैसे अब मान लो हम लोग तो कहा जाते शिक्षा के समस्या है समुदाय में, शिक्षा के कारण से हुई, लेकिन जो जन्म देती महतारी कत्ते कागज में कत्ते जगह आप संपत्ति लिया जाते, जगह जमीन नामे करावा जाते, जगह जमीन बेचा जाते है नी, महतारी बाप के नाम में जो जगह जमीन रहता अपने नाम किया जाते, फिर भी महतारी के नाम में अगर याद नहीं है तो फिर का समस्या है जी के कारण से महतारी के नाम आप लोग उनका पहला दर्जा नहीं दिन जाते कि जी के कारण से है कि वो जो काम आपके प्रयोग में ना ही महतारी के नाम इसके कारण से ना याद है कि कैसे बाप के नाम तो हर कागज में रहा थे, महतारी के नाम बहुत से कागज में कम रहा थे जिसके कारण से आप अपने महतारी के नाम ना याद है। अच्छा छोड़ा जाए विषय वस्तु सखी और हम लोग चला
0: जाए सखी इसके विषय में बाद में फिर बात करा जाए हाँ। दिन है ना अभी चला जाए व्यापारिक विश्राम के तरफ इसके बाद गीत से
1: हाँ चला जाए व्यापारिक विश्राम के तरफ और फिर कार्यक्रम घर अंगना तो है ये है
2: हाय के गर्ने होला अब सुगर पनि बढ्दै छ थायराइडको समस्या अझ छुट्टै छ कति ठाउँमा देखाए तर भएन
3: ए तिमी यति चिन्तित किन के भयो फेरि
2: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ
3: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन मैले राम्रो खबर सुनेको छु
2: कस्तो खबर
3: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गंगाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ
2: ए साँच्चै
3: अझै सुन महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ
2: ए त्यो त झन् राम्रो
3: हो नि डाक्टर पूनम आचार्य एमबीबीएस एमडी केयु IVF स्पेशलिस्ट इंडिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS MSKU वरिष्ठ कंसल्टेंट जनरल तथा लैप्रोस्कोपिक सर्जन बाट सेवा पाइन्छ
2: वाह अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो
3: अझै अरु सेवाहरू पनि छन् दैनिक ओपीडी सेवा गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा भिडियो एक्सरे एक्सरे ईसीजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा
2: यो त पूरा प्याकेज जस्तै भयो नि
3: हो त अब ढिला नगर जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न
2: हजुर आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज फोन नम्बर 081531860 र 081531861
3: अब चिन्ता होइन समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक
4: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
5: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9858030479 र 9848021380
6: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ
6: हो र यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि
7: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै NICU PICU ICU हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन् अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि
6: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि
6: सम्पर्क नम्बर 081535717
8: बाबा के कान पिरात है दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जाता है इतने कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में ढूसी भवा
3: कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
8: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848206697 9858023697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
8: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
8: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
8: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081536465 9829808665 और 9842808465।
10: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
11: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
10: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
11: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आईबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
12: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
10: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
11: धन्यवाद शुभश्री आईबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
12: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईबीएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414199।
13: सुबिसु अपर्च्युनिटी 1900 वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुबिसु अपर्च्युनिटी। यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र ₹1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना ₹221। साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। सुबिसु।

0: हाँ सखी कितना बढ़िया गीत रहा है ना। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई ना है दूजा। और सच में यहाँ माँ बाप के दर्जा भगवान से भी बढ़कर रहा थे, काहे कि अब उन्हीं तो दुनिया में लेके आई हैं, तो हम लोग दुनिया देखा गया है ना। तो वही यही बात ही संदेश है कि अपने माँ बाप के कभी दिल ना दुखावा जाए,
1: हाँ
0: और
1: सखी
0: जितना हो सके उनके सेवा सत्कार में कोई कमी ना रखा जाए। और अपने पहली बात ही सोचा जाए कि हमरे भी आगे संतान है, जैसे हम अपने माँ बाप के साथ माँ करा जाइए, वैसे हमरे भी संतान हमारे साथ करिए। अगर आप अच्छा करा जाइए तो आपके संतान भी आपके साथ माँ अच्छा करिए, है ना सखी। तो सखी अब का करा जाए, समय हो चुका
1: हाँ,
0: है
1: समय भी
0: प्रोग्राम
1: वही
0: का।
1: गवाह है। और हम लोग आज सोलह श्राद्ध के वजह से जितिया पर्व भी
0: हाँ
1: महतारी के नाम में ज्यादा प्रयोग संतान के उपवास हुए
0: और
1: कहके
0: कितना अच्छा है
1: हर
0: कि यही
1: चीज।
0: दिन पड़ा भी है ना, यही महीना में
1: हाँ
0: पड़ा भी है
1: तो ये चीज इनसे
0: जितिया
1: क्या होगा,
0: पर्व।
1: हम लोग थोड़ा भावुक हो गए हैं कि ये चीज परिवार से जुटा है, दोनों चीज परिवार है। हम लोग संतान बिना कत्ते परेशान रह जाते, कत्ते उपवास रखा जाते, कत्ते हम लोग मनौती रखा जाते। तो वही संतान हम लोगों का आगे भी निरंतरता दे, हम लोगों का मान सम्मान रखे, अपने घर के मान सम्मान रखे और अपने कुल का आगे बढ़ावा जाए, और उनके नाम प्रतिष्ठा का हमेशा ताजा तरोताजा रखे। तो
0: हाँ
1: सखी यही कहते हम लोगों के सलाह सुझाव तो आप लोगों के साथ ही है ये है।
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल
1: बाकी जो आप कार्यक्रम नए सुना गया है तो जरूर हम लोग के ये छोटा सा वीडियो फिर फेसबुक द्वारा कृष्ण सार के एप्स द्वारा हम लोग पोस्ट करा जाई, यूट्यूब में भी जाई, हम लोगों के व्यक्तिगत जो आईडी है उमा भी शेयर हुई। तो जरूर आप लोग कस लाग कैसन लाग और कैसे इमा और सुधार करे के चाहिए, जरूर आप लोग हम लोग का प्रतिक्रिया दिया जाए और हम लोगों का साथ हमेशा देते रहा जाए।
0: देते रह
1: यही
0: जाए।
1: कहते आज के कार्यक्रम में विशेष जीतिया पर्व जो कि संपूर्ण हमले सखी लोगन का, हमारे दीदी बहनी लोगन का हार्दिक मंगलमय शुभकामना,
0: शुभकामना।
1: और साथ ही सोलह श्राद्ध का हमारे पितरन का, संपूर्ण हमारे सखी हम घर परिवार के पितरन का अच्छे से उनका तरोताजा करा जाए, दान दिया जाए, उनके जो भी दोष कष्ट है उनका आप लोग हरा जाए, यही
0: हरा जाए।
1: शुभकामना कहते। अब हम लोग दोनों सखी विदा दिया जाए,
0: हाँ विदा दिया जाए
1: नहीं
0: साथ
1: हम
0: ही हम
1: लोग
0: लोग
1: आप
0: इनका।
1: लोगों से भी विदा लीन जाते हैं, आप लोग का भी अब हम लोग धन्यवाद भी दिया जाते हैं कि इतने देर साथ में रहेगा। अगले हफ्ते नया विषय वस्तु के साथ फिर उपस्थित हुआ जाए, तब तक हम लोग का ऐसे साथ देते रह जाए और
0: देते
1: रेडियो
0: रह
1: कृष्ण
0: जाए।
1: सार FM सुनते रह जाए। तो नमस्कार,
0: नमस्कार,
1: राम
0: राम
1: राम,
0: राम,
1: शुभ
0: शुभ
1: दिन।
0: दिन।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए अब खास बात खुदा में है।

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: बीर डेंटल बीर डेंटल बीर डेंटल
2: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
5: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37।
6: नींद
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 9848-20-697, 9858-23-697 और 9814-83-697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
9: Back to back. Back to back.
10: In this song on.
9: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
1: ओहो
3: दोनों डील कर
0: टाइट वेरी टाइट।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.